इंडियन प्रोग्राम में सबका बहुत बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम एवरीवन. मैं हूँ रेरी और मैं प्रेजेंट करने आई हूँ इंडियन प्रोग्राम उन रंगों की उड़ान और फ्लाइट ऑफ दोज कलर्स. और ये प्रोग्राम मैं प्रेजेंट करती हूँ हर फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ संडे को फ्रॉम 6 to 7 PM. और यस, आज फिफ्थ संडे है, लकी फिफ्थ. एंड यस, आई एम हियर टू प्रेजेंट दिस प्रोग्राम. और ये प्रोग्राम मैं प्रेजेंट करती हूँ, आई प्रेजेंट दिस प्रोग्राम इन इंग्लिश, विच इज़ अ ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. और द पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू ब्रिंग कल्चरल अवेयरनेस एंड यस, नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, ब्रिंगिंग द फ्लेवर ऑफ द कल्चर, द लैंड. And yes, that's what I have brought for today. I've got something I'll share a little bit later. और अभी मैं play करने वाली हूँ as always, थोड़ा spiritual और करते हैं. और

अगर अपने अंदर की आवाज़ सुने तो कितना कुछ है. द होल यूनिवर्स इज इनसाइड अस, ईच वन ऑफ अस, एंड स्टिल हम बाहर के शोर को, बाहर की अप्रूवल्स को और बाहर की बाहर वर्ड्स ढूंढने लगते हैं. Whereas the beauty lies within, and from within it all flows. So yes, जो शांत होके है गूंजता. Yes, all right. So the next one. So मैं थोड़े old melodies एक दो चला के and फिर we'll move on. तो ये भी interesting सा song है. I don't know how this is possible. So this guy is saying, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, पिंक कलर की आईज कैसे हो सकती हैं, बट चलो उसको लगती होंगी. लेट्स सी.

97.1 FM 3MDR. You're listening to Reri and I'm here presenting Un Rangon Ki Udaan, The Flight of Those Colors. And yes, wo song, I'm sure sabhi ke ghar mein ye kisi na kisi time par zarur baja hoga. Aur yes, wo usme baar baar din ye aaye aur yahan par baar baar wo song, I had to work out different jo the. I think first one just 1 minute ke liye tha and I didn't realize that. But ये जो सॉन्ग है इसकी बहुत पुरानी मतलब एक ट्रेडिशन है हमारी मेरी फैमिली में शुरू से ही रही है कि जब भी ये सॉन्ग जब भी बजाया जाता है तो एवरीवन जस्ट सभी जितने भी चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं शुरू से ही जो इसके सॉन्ग पे जो स्टेप्स हैं सो दिस इज़ आई थिंक 1970s का ये सॉन्ग है एंड एवरीवन जस्ट गेट्स अप एंड वो सारे जो स्टेप्स उसमें जो हैं वो एज इट इज़ हम लोग कॉपी करके और इतना हैज ऑलवेज बीन सो मच फन कोई भी बर्थडे पे वो इतने डिफरेंट एरा के स्टेप्स हैं बट वी जस्ट हैव ऑलवेज लव्ड परफॉर्मिंग दिस कोई भी किसी का भी बर्थडे पे एंड रियली ब्यूटिफुल मेमोरीज और अभी तक चलता है ये हमारे एंड आई प्लेड इट बिकॉज यस्टरडे इट वॉज माई बर्थडे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अभी भी बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ अपने बर्थडे पे और वैसे भी इट्स एज हम लोगों को जैसे यू नो दिस आजकल इट्स लाइक कि लोग जो अगर इफ देयर समथिंग अनसेटलिंग दैट हैपेंस या समथिंग विच इज़ जो कोई ट्रबलसम कोई चीज़ होती है लोग पीपल ड्रैग इट ऑन फॉर है ना कि डेज वीक्स मंथ्स ईयर्स तक कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ और ऐसे ऐसे इतना दुख भरी चीज़ों की इतनी लंबी पूंछ लग जाती है वेयर एज अगर कोई अच्छी चीज़ कोई हैप्पी ओकेजन है वो कट शॉर्ट कर दे करने की एक तरह से जैसे एक सोशल ट्रेडिशन ही हो गई है कि अगर कोई फिर भी एक्साइटेड अगर थोड़ा इसको एक्सटेंड करे तो लोग सोचते हैं कि इतना क्या बट आई डोंट फॉलो दोज वो आई मीन इवन इफ यू नो इट्स जितना भी एक्सटेंड जितना भी जब तक खुशी हो किसी चीज़ की तो उसको I don't believe in suppressing usme and I'm very excited aur वैसे भी I was born in the evening to wo jaise wo kehte hai na 24 hours tak har ek cheez ka kyun hai na to wo 24 hours agar do days pe spill kare jis din shuru hua aur jis agle din to I'm still in that mode so isliye I had to play that song aur I was trying something else as well which I'm not sure if it worked but I'll yes I wanted to play this so I just love it कि अपने एक मौका मिला इस ज़िंदगी का एक इसको जीने का यहाँ पर आने का एक्सपीरियंस करने का और ये बचपना नहीं है आई वुड से कि इट्स नॉट चाइल्डिश बट रीलिविंग एक वो एरा वो टाइम पीरियड जहाँ पर क्यूरियोसिटी हमारी पूरी फुल ऑन होती थी जहाँ पर दुनिया को देखने का हर रोज़ का एक वो नज़रिया कि वो घिसी पिटी सोच नहीं बल्कि एवरी डे यू वुड जस्ट यू लुक फॉरवर्ड टू कि आज क्या करेंगे एक्साइटमेंट चाहे कुछ भी हो मार पड़े ये करे वो होए बट स्टिल यू नो एज चिल्ड्रन तो आई थिंक ये जो एक हमारे को हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता नहीं कहाँ से सीख लेते हैं कि बड़े होके आप वो थोड़ा वो टोन डाउन करो इतनी एक्साइटमेंट नहीं खुशी नहीं यार दुख को और या कुछ ऐसे है उसको बढ़ा चढ़ा के लंबी कतारों में उसको सोचो फील करो बयां करो वेरस खुशी को ये बचकाना नहीं आई थिंक एवरीवन ये वी नीड टू चेंज आई मीन एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक कि हमें करना चाहिए कि खुशी है तो हो जाने दो अगर हो तो दिल खोल के खुश हो जाओ और आई डोंट नो लोगों को लगता है कि छुपा लो इस चीज़ को कि मेरा बर्थडे आई फील सो एक्साइटेड कि है भाई आई एम वेरी हैप्पी सो यस सो आई हैड टू प्ले दैट सॉन्ग एंड आई हैड टू शेयर दिस और अब ये जितने दिन तक ये फ्लो रहेगा तो इट इज़ व्हाट इट इज़ सो यस हैप्पी बर्थडे टू मी एंड हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन जिसका भी आसपास है जो भी मे इज़ द बेस्ट मंथ आई थिंक मे इज़ द बेस्ट मंथ आई मीन बायस्ड है चाहे पर देखा जाए तो यू नो लाइक वो जैसे कोई विशेज़ भी होती हैं तो यू नो मे यू नो वो जैसे मे
God grants you this, तो वो उसमें भी वही यूज हुआ वर्ड और कोई नहीं महीना हुआ. तो आज मुझे कहना है, सो मैंने कह दिया कि इट्स अ ब्यूटिफुल मंथ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. एंड यस, एनीवे, सो दिस ऑलमोस्ट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ माई शो. 3 मिनट रहते हैं, मैं एक 5 मिनट्स का सॉन्ग, आई डोंट नो कैसे फिट होगा, पर मैं चलाने वाली हूँ. आई जस्ट लव दिस सॉन्ग एंड आई बी बैक नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट मंथ में देर इज समथिंग एक्साइटिंग, अभी नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वीक बताऊंगी. सो यू हैव टू ट्यून इन नेक्स्ट वीक एज वेल एंड यू कैन सेंड अस अ टेक्स्ट ऑन 04971 02000 एंड लेट मी नो कि कैसा लगा आपको आज के सॉन्ग्स. थोड़ा सा ऑल ओवर द प्लेस था, आई डिडंट रियली गेट अ चांस टू डू, आई हैव बीन सो एक्साइटेड. सो यस, नेक्स्ट वीक आई विल शेयर समथिंग एक्साइटिंग. और अब हम सुनते हैं ये सॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो द लास्ट वन एंड इसके बाद स्टे ट्यून. टोनी इज कमिंग अप विद बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले करता है वो क्रॉसविंड्स के लिए. जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे एंड यस, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी. अगर आपका बर्थडे है आसपास तो जितना अच्छे खुशी से मना सकते हो, जस्ट अच्छा है पैदा हुए, अच्छा है आ गए, तो यस, दैट्स इट. ऑलराइट.